0: नहीं कमी सर।
1: आओ आओ, तू पायलट से आई ना हमारा झील कर लो था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
0: कुछ नहीं हुई सर, पायलट के 15 सफवा रख लू, डर लग के घूम रहते हूँ, जैसे चेयर सर लग लू तो हलचल नहीं करे, मोर सब होगा तो पायलट जाके
1: मोर सब को ना चलेना तो नहीं चलेगा ना?
0: नहीं चलेगा सर।
1: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा मुझसे कह रहा हूँ मुझ सब देव कल से वही न चलाए नहीं बिठा तब मूल से भी वाकर में रहा बीस असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल देख पड़ना सप्पा है ना नंता हाथ से पकड़ा नहीं बीच
0: सर नो सप्पा देखना से आ करना
1: सप्पा मुआल देख पड़ना से थे जात से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुल कुछ देर पास असम थे सप्पा दस सकत वह ओर से मुआल अवस्था में फिर सप्पा हाथ से चलाए नहीं बीच बेंतन इतना मल अच्छी ले चला का मुआल नहीं मुआल कहीं का जाना से भी था
2: मुआल सापन से सावधान रही मुआल वा मार्गी सप्पा होना पकड़ना वा खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बास संफी सप्पा दस से था संभव हुई सम सप्पा फोटो खींची व पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी
3: सर्पदंग से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंग से उपचार केन्द्र कहाँ बाकी था पता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर से बिठा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
6: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
7: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
6: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
7: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
8: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854889213, इमेल ocmcticapur@gmail.com।
9: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: हम इ लड़का फिर कब्बू कापी रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटी गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कापी हरी थी ना कबू पेंसिल हरी थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर।
1: अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो, तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ।
0: सासानो कुरामा तनाव हुने,
1: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने,
0: कुलटमा लाग्ने,
1: छटपटी हुने,
0: मुटु धेरै ढुकढुक हुने,
1: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही जेठ 23 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला।
0: टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ये पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमबाट जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहानिक 9 बजे के खोज खबरमा अपनेहरुको स्वागत बा। खोज खबर समय सीता चौधरी के राम राम। अपने उक्रा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलमा www.tikapurfm.org मोहलाफ हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो अफिसियल टिहलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। समय में विद्युत लाइन नहीं बनल टीकापुर की उपभोक्ता समस्या, विद्युत लाइन हाली बनाई पड़ना नागरिक के मास। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय के कैलाली के आयोजना में कर्णाली मावी टीकापुर में आज विद्यालय मतदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन। प्रतिनिधि सभा की बैठक जेठ 25 गते समय के लाख स्थगित। नेपाली पुरुष क्रिकेट टोली एशियन गेम्स के लाख छनौट। टीकापुर लम्की विद्युत प्रसारण लाइन समय में नहीं बनलक नागरिक समस्या होती रह। यह वर्षा घने काम मरेना कैके ठेक्का लगलग विद्युत प्रसारण लाइन बनेना अभिन काम नहीं बढ़लक कारण नागरिक को समस्या में उठी रह। यह वर्षा घने काम कर सकना ठेक्का लेलक लम्की टीकापुर विद्युत प्रसारण लाइन के काम समय में नहीं ओरलक। विद्युत आपूर्ति में समस्या आयना करलबाट विद्युत उपभोग माग बढ़ती गये पाछ प्राधिकरण के भजनी राजापुर टीकापुर के लायक एक ठो खम्भा में अलग अलग लाइन लन्ना करके 33 केवी लाइन बनेना लगलबाट 10 मीटर के खम्भा 30 वर्ष से आघने सीधे तनलक लाइन खेतों में पर्लक अपुरुख लगना हो। मरमत संभार करपना कठिन हुई पाछ सड़क के किनार किनार नया लाइन बनेना लगलबाट अब टीकापुर में 10 मेगावाट राजापुर भजनी स्टेशन मसे करीब 6 मेगावाट विद्युत खपत हुटी रह। 22 मेगावाट माखुलक 17 मेगावाट विद्युत प्रवाह करा सकना क्षमता के लाइन पगलल तार चुडलक जम्पर जन्ना काम हुटी रह। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के टीकापुर वितरण केन्द्र के प्रमुख इंजीनियर आनंद सापोटा बोटेलबाट यहां विद्युत माग बहलक बेला 160 वोल्टेज समय झरना विद्युतीय उपकरण के काम नहीं करना व आपूर्ति बंद होना समस्या हुई रह। टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ के महासचिव प्रकाश तिमिल सेना बोटिलोट जडन कार्य के लिए निर्माण कंपनी करना हुलक सामग्री उपलब्ध करना व साइट क्लियर करना काम ढिलाई हुलक कार्य संपन्न करना फिर ढिल हुलक लक्ष्मण निर्माण सेवा प्रतिनिधि जीवन राणा बोटिलोट प्राधिकरण के सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय के प्राविधिक प्रमुख इंजीनियर दीपक चौधरी खम्बा व पिन इन्सुलेटर केन्द्र के ढिला हुलक अमौरीमा सुखलक दुई रूखुआ पथयम व्यक्तिगत जग्गा मरलक लिप्टिस के रूखुआ हटेना बाकी रहलक वहां के खम्बा में डबल लाइन क्रस लाइन हुईना हुलक समय लगलग बोटिलोट वहां के हाली लम्की तोरैयापुर क्षेत्र के 9 किलोमीटर लाइन चार्ज करके भजनी चलना कोशिश हुईटी रह। यहां टीकापुर के लोड कम होना पे बोटिलोट प्राधिकरण के 4.5 करोड़ को लागत में लम्की टीकापुर 16 किलोमीटर नया लाइन बनेटी डबल सर्किट तार ओरिना मिलना 500 जति खम्बा गाट के विद्युत आपूर्ति क्षमता बढ़ाई दिल्वा समय में लाइन नहीं बनल यहां की आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई रह। कर्णाली मावी टीकापुर में सोमवार विद्यालय मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कर्लबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम के अवसर में नमूना मतदान समेत कर्ल रहे। नमूना मतदान में कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थी सहभागी रहे। पहले नमूना मतदान में सहभागी विद्यार्थी खुशी हुलबाट कर्णाली मावी टीकापुर में विद्यालय मतदाता शिक्षा कार्यक्रम में सहभागी हुल कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्रा ऋतिका चौधरी पहिलोचो मतदाता बनलक मतदान कलबाटी वहां के आपन मन पर्ना संगे उम्मीदवार हं गोप्य मतदाता करहिना मतदान करना पैला खुशी लगलक नमूना मतदान हुले सफेदी खुशी हुलक बुझलक वहां बोटिलोटी औस्तक और विद्यालय के और छात्रा रिया उपाध्यक्ष आपन पहले चो मतदान प्रक्रिया में सहभागी हुलक खुशी लगलक बोटिलोटी वहां के कार्यक्रम में भोट कसिक डरना भोट डरके कसिक पटेना सदर मत कसरी बढ़ेना हुलक बात मथा पैलोपुटी बाटी रिया और ऋतिका जसिन झरना ठकुला फे खुशी हुलबाट वहां के फे पहले सो नई मतदान कार्यक्रम में सहभागिता जनल बाटी वहां फे नमूना कार्यक्रम बात शिक्षक बाटी प्रदेश निर्वाचन कैलाली के अधिकांश विद्यालय में नमूना मतदान कार्यक्रम संचालन करती रहलबाट विद्यार्थी मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना कार्यक्रम कलक प्रदेश निर्वाचन कार्यालय के कैलाली के प्रमुख प्रेमराज भट्टबुटिलोट वहां के आस बालबालिका काल मतदाता उम्मीदवार निर्वाचन प्रचार के माध्यम में हुलक बजार मत के संख्या घटेलक सदर मत वृद्धि करना विद्यालय के स्तर में कार्यक्रम संचालन करलक बुटिलोट। खोज खबरमा एकरी विश्राम विश्राम पाछा फेरि विश्वतिर सामुदायिक रेडियो टिका पुरा एफएम
1: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
2: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ब्याग प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008
0: सरकार संयुक्त राष्ट्रिय संघीय वातावरण कार्यक्रम युनिफ अन्तर्गत ओजन तह हानि पुगेन पदार्थकी व्यवस्थापन वा न्यूनीकरण सम्बन्धी मेटेरियल प्रोटोकल के कार्यान्वयन सम्झौता स्वीकृति गर्न निर्णय कलबा मंगलबार दिनकै बैठक मन्त्री परिषद बैठक असी निर्णय कलबा मन्त्री परिषदकै सिंहदरबारमा बैठकीय निर्णय सार्वजनिक गति शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता सस्मित पोखरेल वातावरण संरक्षण ओजन तहकी सुरक्षा संघ जोडलक उक्त महत्वपूर्ण सम्झौता हाँक बढ़िन निर्णय कलक बोटिलोबाट प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोध हुल्बा छ प्रतिनिधि सभाकै बैठक जेठ 25 गतेसम्म केला स्थगित हुल्बा प्रतिनिधि सभाकै कार्यिक बैठक शुरू हुलकसँग प्रतिपक्षी दलकै सांसदक र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेपाल ओ भारतकी सीमा मिसलक कैके दिलक अभिव्यक्ति सचैनामा कति उठलक विरोध जनेलाबाट वकरपास सभामुख दोलप्रसाद अध्यक्ष संसदकी आगा बैठकको अनौपचारिक छलफलमा समेत विपक्षी दलकै तर्फमा से आफ्नो धारणा आइलको उहाँ आफ्नो ध्यान आकर्षण समेत ठूलो कति सभा सञ्चारमा सहयोग गर्न आग्रह कलबाट सभामुखी आग्रह पासा समेत विरोध निरन्तरता धेरपासा सभामुखी अर्याल विपक्षी दलकै सांसद थुकन पालै पालो बोल्न समेत दिल रहे उहाँ क्रममा नेपाली कांग्रेसकी सांसद अभिषेक प्रताप शाह श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद हर्कराज राई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुशबू ओली नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद युवराज दुलालो नेकपा एमालेकी सांसद गणेश सिंह ठगुन्ना देशकी कार्यकारी प्रमुख सदन मरलक अभिव्यक्तिकै दीर्घकालसम्म राजनीतिको कूटनीतिक प्रभाव रहन हुलक देशकै हितकै गल्ती सचेना आग बढ़लक मजा हुलक सुझाव दिलबाट वकरपाछक विपक्षी दलकै सांसद थुप्र विरोध नै बीच सभामुख दोलप्रसाद अर्याल प्रमुख प्रतिपक्षी दलकी नेता भीष्मराज आङदेवी बोल्न समय जसपी उहाँ समय नलिहेलपाछ विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी राष्ट्रपतिकै कार्यालयमा से प्राप्त पत्र वाचन गर्दै बैठक स्थगित गर्नबाट प्रतिनिधि सभाकी अरू बैठक जेठ 25 गते सोमबार बिहानकी 11 बजे बैठना हुलबाट सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै कुलपतिमा कञ्चनपुरकै रामचन्द्र नेपाल नियुक्ति हुलबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशकै मुख्यमन्त्री तथा प्रतिष्ठानकै संरक्षक कमल बहादुर शाह उहाँकै कुलपतिमा नियुक्त कर्लबाट संघका प्रतिष्ठानकै उपकुलपतिमा कञ्चनपुरकै सरस्वती दहालो सदस्य सचिवमा कैलालीकै सुरत राउत नियुक्ति हुलबाट प्रतिष्ठानकै सदस्यमा डोटीकै कृष्णा सिरादेव बझाङकै विष्णु भक्त खैर नियुक्त हुलबाट इन्स्याका प्रतिष्ठानकै 22 जना प्रज्ञा सभा सदस्य नियुक्त हुलबाट नयाँ नेतृत्व चयनसँग प्रतिष्ठानकै संस्थागत गतिविधि तथा भाषा साहित्य कला संस्कृति व अनुसन्धानकै क्षेत्रमा भिना काम थप गतिलो लिन अपेक्षा कर्लबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार प्रदेशकै भाषा साहित्य कला संस्कृति तथा बौद्धिक सम्पदाकै संरक्षण प्रवर्धन विकास गर्न उद्देश्यकै सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन कर्लबाट आज देशका अधिकांश ठाउँमा मौसम सामान्यतया बदलिरहनमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिनकै देशकै हिमालय पहाड़ी भूभागकै साधारणतया बदली लग्न छ भने तराई भूभागमा आंशिक बदली लग्नमा अस्तकर्कै देशकै हिमालय पहाड़ी भूभागकै कम ठाउँमा तथा लुम्बिनी ओ सुदूरपश्चिम प्रदेशकै तराई भूभागकै एक दुई ठाउँमा मेघर्जन चट्याङ सहित मध्यमसम्मकै वर्षाकै सम्भावना रहल्वा मधेस कोशी बागमती गण्डकी प्रदेशकै तराई क्षेत्रमा तातो दिन हुने सम्भावना रहल्वा आज रातकै देशकै हिमाली भूभाग म साधारणतया पहाड़ी भागमा आंशिक बत्ती लग्ना हो तराई भागमा मुख्यतया सफा रहना महाशाखा जाने बाबा कोशी प्रदेश की हिमाली पहाड़ी भूभाग लगायत बागमती गण्डकी कर्णाली प्रदेश की हिमाली भाग के एक दुई ठाम हल्का वर्षा हिमपात के संभावना रह टीकापुरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजकी 30 औं स्थापना दिवसकी अवसरमा आदर्श नागरिक समाज परिकल्पना शान्ति समाजकी लम्बन कलक डगर विशेष नागरिक संवाद कार्यक्रम हिलवा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका लालिकी सभापति भोसराज चौधरीकी अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा समाजकी पूर्व केन्द्रीय सचिव भक्त बहादुर विश्वकर्मा स्वागत मन्तव्य सहित कार्यक्रमकी अवधारणा पत्र प्रस्तुत कला रही कार्यक्रममा नागरिक समाज टीकापुरकी संयोजक भीमराज चपाई नेकपा एमाले टीकापुर नगर सचिव भानुभक्त जैसी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी दयाराम सञ्जाल मानव अधिकार तथा शान्ति समाजकी पूर्व केन्द्रीय सचिव टेक बहादुर सार्की तथा एमएनएससी इन्टरनेशनल संघाबद्ध मथुरा प्रसाद नेपाली लगायत मन्तव्य व्यक्त कला रहे वक्ताहरू र मानव अधिकार तथा शान्ति समाजकी विगत 30 वर्ष से मानव अधिकार के संरक्षण शान्ति के प्रवर्धन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता के सुदृढीकरण के लाख पुगैती अहिले योगदान उल्लेखनीय लगबटिलोबाट सँगै आगामी दिनमा फेरि मानव अधिकारकै रक्षा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न संस्थाकी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नमा जोड दिल रहे कार्यक्रमकै संचालन समाजकै सचिव दीपक बोगटी गर्न रहे खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछा फेरि विश्वन्तरेवी सामुदायिक रेडियो उठीका पुरा एफएम
3: जानकी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरूरी सूचना
4: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हकको धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075 बाल श्रम ऐन 2056 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरे गराइएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वत बदर हुने भएकोले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर ग्यारेज होटल कारखाना गिट्टी बालुवा घरेलु कामदार गाडीमा सहचालक नलगाउन साथै धूम्रपान मध्यपान सुर्तिजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बाल बालिकालाई संलग्न नगर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ यदि कसैबाट कानून विरूद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराइएमा कानून बमोजिम कार्यवाही हुने बेहोरा सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ
3: अध्यक्ष गणेश चौधरी बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका जानकी कैलाली
5: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकलमे जाइस् तो
6: मैनै जाइ उहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नै निकर्छु
5: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो यहाँ हेर ई पत्रिकामे लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
6: ए हो दादू अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
7: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपारके तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाउ खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होइति रहल बा सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9046477417
0: विश्राम पासा फिरसी स्वागत बा आप खेल खबर नेपाल एडभेन्चर रनिङ फेडरेशन के आगामी असार 3 गते सुदूर पश्चिम प्रदेश के प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र अछाममा रामा रोशन स्काई रन 2026 आयोजना कर्णाखुलबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय

0: समावेश गरी लुवासनाका स्थानीय युवा प्रोत्साहन कर्ना 20 वर्ष मुनिके लाख 5 किलोमिटर सामुदायिक दौड़ समेत धर्लबाट प्रतियोगितामा 100 खेलाड़ी की सहभागिता रहना आयोजक जनलवा प्रतियोगितामा खुलातर्फकै विजेता 1 लाख उप विजेताकै 75,000 र तेस्रो हिनाहा 50,000 रूपियाँ पुरस्कार पैना हुलबाट अन्य विधायक विजेता हाँफे आकर्षक पुरस्कार प्रदान कलक मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फेडरेशनकी अध्यक्ष केन्द्र कुंवर जानकारी दिलबाट नेपाल एसियन गेम्स पूर्व पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिता केलाग छनौट हुलबा यी मलेसियामा जारी छनौट खेलमा मंगलबार घरेलू टोली मलेसिया चिन्ह 9 विकेट हटेलपा छन्। नेपाल जापानमा आयोजना हुन आसन्न एसियन गेम्समा स्थान बनिँदा रहे जित केलाग 85 रनके लक्ष्य 45 मलेसिया 7.5 ओभरमा 1 विकेटकी क्षतिमा लक्ष्य भेटिँदा रहे हिंसाको पहिलो ब्याटिङ कलक चिन्ह निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेटकी क्षतिमा 84 रन बनिँदा रहे जितसँग समूहमा मलेसिया फेरि छनौट यात्रा तय गर्नबाट समूहमा लगातार दोस्रो हरलक्ष्यमा चिन छनौटमा बाहिरबाट अब समूहकी अन्तिम खेलमा नेपाल हो मलेसिया बीच बिहिबार प्रतिस्पर्धा हुनेमा नेपाल समूहकी आफ्नो पहिलो खेलमा चिन्ह 221 रन हटिला रहे समूह बीमा ओमान हङकङ बहराइन ओ सिंगापुर हल्वा समूहकी शीर्ष दुई टोली एसियन गेम्स छनौट हुन प्रावधान रहल्वा। यह समाचार संखोज खबर वाली जनासे पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से एक समय में विद्युत लाइन नई बनला टीकापुर के उपभोक्ता समस्या विद्युत लाइन हाली बनाई पड़ना नागरिक के मार प्रदेश निर्वाचन कार्यालय के कैलाली के आयोजन में कर्णाली मावी टीकापुर में आज विद्यालय मतदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन प्रतिनिधि सभा की बैठक जेट 25 गते समय के लागि स्थगित नेपाल पुरूष क्रिकेट टोली एसियन गेम्स के लाग छनौट लीचावकला खोज खबर रह प्राविधिक मित्र छतिलाल चौधरी धन्यवाद देती अबकला खोज खबर से मई सीता चौधरी बिराइट एक 12 बजे की खोज खबर सुन सीखी सामुदायिक रेडियो टीका प्रोफेशन सुनती रवि राम राम।
1: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
0: असार 6 गते पहिलो शनिबार
1: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रायसिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
2: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
0: आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
1: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
3: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना उनी न पट्टा नि पैना त
4: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
3: तुहार बाटास्तर तुहार रामपुरान दिदी ये नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
4: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आऊ जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर फेहरी सिंह सुनार
3: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846239261।
5: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज।

0: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव और शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
1: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे, जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुई देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली। युनाइटेड एकेडमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा वाणिज्य संकाय मा भर्ना खुल्यो।
2: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
0: पढाइ हुने विषयहरू
3: अनिवार्य नेपाली,
0: अनिवार्य अंग्रेजी,
3: सामाजिक गणित,
0: ऐच्छिक लेखाशास्त्र,
3: ऐच्छिक वित्तशास्त्र,
0: ऐच्छिक अर्थशास्त्र,
3: कम्प्युटर विज्ञान।
0: भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू,
3: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गते देखि,
0: भर्ना सुरु जेठ 3 गते देखि,
3: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गते देखि,
0: पठन पाठन समय बिहान 6 बजे देखि 10:30 बजे सम्म।
3: दक्ष अनुभवी तथा विषयगत विशेषज्ञ शिक्षकद्वारा सहजीकरण गराइनेछ।
0: स्मार्ट क्लासरूम तथा डिजिटल लर्निङ सिस्टमको व्यवस्था,
3: विद्यार्थी मैत्री, शान्त तथा सुरक्षित शैक्षिक वातावरण,
0: नियमित युनिट टेस्ट, विकली टेस्ट तथा मोडेल इक्जाम सञ्चालन गरिनेछ।
3: कमजोर विद्यार्थीका लागि विशेष सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था,
0: उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई मासिक तथा वार्षिक पुरस्कारको व्यवस्था,
3: समय अनुसार प्र्याक्टिकल प्रेजेन्टेसन तथा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा विशेष जोड,
0: आधुनिक कम्प्युटर ल्याब तथा इन्टरनेट सुविधा सहितको अध्ययन व्यवस्था,
3: अनुभवी करियर काउन्सिलरद्वारा भविष्य निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन,
0: नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास तथा सार्वजनिक बोल्ने कला सम्बन्धी तालिम,
3: अनुशासन, नैतिक शिक्षा तथा सकारात्मक सोचको विकासमा विशेष प्राथमिकता,
0: अतिरिक्त क्रियाकलापद्वारा विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गराइने,
3: विज्ञान प्रविधि तथा व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था,
0: CCTV निगरानी सहित सुरक्षित तथा व्यवस्थित विद्यालय वातावरण,
3: अभिभावक र विद्यालय बीच नियमित समन्वय तथा प्रगति प्रतिवेदनको व्यवस्था,
0: सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ,
3: हाई डिग्री अफ डिसिप्लिन एन्ड एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट भएको।
0: थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77।
3: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय, टिकापुर, कैलाली।

0: रिमाल मेडिकल हल टिकापुरमा मानसिक नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना।
1: काठमाडौँ पाटन अस्पतालका मानसिक नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन अर्याल एमबीबीएस न्याम
2: यही जे 23 गते शनिबारका दिन
1: रिमाल मेडिकल हल टिकापुरमा आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा दिइने सेवाहरू जस्तै बेला बेला मुटुको गति बढ्ने, हात खुट्टा काम्ने, झमझमाउने, धेरै पसिना आउने, एक्कासी बेहोस हुने, डर लाग्ने, मनमा छटपटाहट हुने, धेरै झस्किने, तर्सिने वा डराउने, असामान्य रूपमा धेरै टाउको दुख्ने, धेरै रिसाउने, जिउ दुख्ने, मांसपेशी वा हात जोर्नीको दुखाइ, दुब्लाउँदै जाने, कामकाजमा मन नलाग्ने, दिक्क लाग्ने, बेला बेला बेहोस हुने, नराम्रो सपना देख्ने, घाँटीमा केही अट्के जस्तो लाग्ने, छातीमा असजिलो महसुस सुने वा मन स्थिर नहुने, कुनै पनि कुरामा मन नलाग्ने, आत्मगलानी हुने, एक्लै हाँस्ने, मुस्कुराउने, बरबराउने, छारे रोग, मिर्गी रोग, रातिको समयमा धेरै मदिरा सेवन गर्ने, लागू पदार्थको सेवन धेरै गर्ने, बच्चा तथा वृद्धहरूको व्यावहारिक समस्या, ओछ्यानमै पिसाब फेर्ने जस्ता समस्या भएका बिरामीहरू सम्पर्क गर्नुहोला।
1: सम्पर्क रिमाल मेडिकल हल टिकापुर एक कैलाली
2: डाक्टर आउने दिन जेठ 23 गते शनिबार।
1: सम्पर्क नम्बर 091-5602-67, मोबाइल नम्बर 98-25-69-13-75 र 98-046-71-598।
3: नरेश दादु, मैले अपना फोन एकैछिन डर त्या गइनो है भौजी, कहाँ बाटी?
4: ऊ गुन्डीमा सुतल बाटी बाबु, चोली नभरि
3: हौजी, कहाँ छि काटन अपनाहन हरक आदर पावे तो सफा सुखर बनाइर बाटी तर फे पाटी तु झारल ना अपनाहन
5: यहाँ पोली गुप कट लगो नानी अपना एम्बुलेंस है खबर तो कर बाटा कटा बेर में को आप ना हो
3: ना से भौजी हमारे बाटी अपनाहना कुछ नहीं हुई दिन गुआराहना दिन से रेख दी वो नरेश दादू एम्बुलेंस लेना समय लागे से था नगर के मोटरसाइकिल बाक लगे उन्हें बैठा कर भौजी है ना सरपरल सा उपचार केन्द्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
4: यी बेला त खैन जात फे दिए न्यु इथ ना स्वयंसेविका दिदी
3: हो हो अब न ठिक कली डाक्टर रो निकट सम बेरेमेन कुछ थे खवाईली हुई
6: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाएकला सपवा कटलक अंगन स्थिर बनिना प्रयास खड पठा तम्म कस गेल रुगा गरगहना घरी पेटी मुन्द्री बाकल से फफर करारी बेरम्या अपेले से झन समस्या बिना भेल कोसित बेरम्या न शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपो अकट लग ठाउं से ऊपर दौड़ी लिए कस खबर नाते कठ असी कर्ण से लगता संसार में समस्या हुई से था जही ले करबेल सपो दसलक शरीर का भाग काट खा फा का पौना अवस्था थे आई से था
7: सर्पदंश से संबंधी भर पर्द वो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकी था पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेव दिठा
8: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज कहा कना हो बाबा के ओस्ता बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर रामप्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल तू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया।

0: हुका पिए रहेठ कभी पेन्सिल रहेठ कबू झलै फटाका आजिठ काकना हो काकना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कैठ कबू पेन्सिल हेरा कैठ कबू झोले फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम तो
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेन्सिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: आएन
1: होइन देउता मानेनन् के हो फगाउनु पर्छ के हो
0: होइन मन्त्र हान्नु पर्छ होला
2: मैले यता

0: गरेको भए होइन गरिहाल्नुस्। यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
1: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनान्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
0: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
1: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
0: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
1: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू, तब तू मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाढ़, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

9848 5728। रिमाल मेडिकल हल टीकापुरमा मानसिक नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना।

0: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। OCMC स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
1: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।
2: ए सन्तेकी आमा पर कान्छाशालाको ब्याको न्यूज आएको छ कसो हो त जाने विचार छ कि नै त
3: आफ्ना कान्छा भाइको ब्या नगर जन पनि भएन जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र पनि माथि गयो
2: यतिकै लागि त सामुएल जोलस बनेको बरु अहिले जाउँ एक दुई दिनमा त फ्याटै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ
3: आज त सन्तेका बाले मनकै कुरो हर्यो छोट त बाई जाउँ।
4: सामुएल ज्वेलर्स सुनचादीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचादी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार सम्पर्क नम्बर 9868-44-1208 9846-39-261।
5: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: दिदी फोन आयो।
1: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी?
2: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
1: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
2: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सक्यो नि।
1: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
2: न्यू अछाम जाल्पा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
3: न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टिकापुर। न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गरगहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसनका गरगहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगल साइनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98688147979, 98246025। अछाम मंगल साइनका लागि धूप सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98246728225।
4: आओ आओ, तू पायलट से आई ना मत ढील कर लो था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
5: कुछ नहीं हुई सर, पायलट के 15 सफर रखना, डर लग के घूमत रहते हूँ, जैसे चेयर से लगने का हल्का नहीं कर। मोर सपो गए के था पहले तो पायलट जाके।
4: मोर सपो है ना चलेना तो नहीं चलेगा ना?
5: नहीं चलेना सर।
4: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा सूरज से कहो मोर सपो देखो कल से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूला से फिर वाकर मरहल 20 असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल दिख पड़ना सप्पा है ना नंगता हाँ साले पकड़ानी भी
5: सर नौसप्पा दखला से आ करना
4: सप्पा मुआल अस दिख पड़ना से थे जाग से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास आसम थे सप्पा दस सकत वह वर्षे मुआल अवस थमा थे सप्पा हाथ से चलाए नहीं भी बेंतन इतना माल अच्छी ले चला का मुआल नहीं मुआल कहीं खजाना से भी था
6: मुआल सापन से सावधान रही मुआल वा मार्गी सप्पा है ना पकड़ना वा खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासा संफी सपवा दस सिठा संभव हुई सम सपो फोटो खींची व पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी
7: सर्पदंश से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकी छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org में हेर सेफ
8: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेर ठ कबु झलै फटाका आज ठ का कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहरत
1: ओहो ये बुढा लिखने का हुई थी जलम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झोलै फटा कै ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रटगे यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिहरी थी ना कबू पेंसिल रहीन ना झोला फाटल हुई थी कहक आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़ ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर रामप्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: विद्युत महाशुल्क भुगतानी संबंधी सूचना 2083 असार 1 गते से टीकापुर वितरण केन्द्राओ लम्की यूनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य रहेको छ विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुकरण यह सूचना से जानकारी कराई थी विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैला

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बातू। मिलबो मिलबो नी करत, का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना, पटा सुगुर बनेला बाट। आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना, कबू कमर घूम जाए ता था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोपराइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।
3: युनाइटेड एकेडमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो।
4: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकेडमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
3: पढाइ हुने विषयहरू अनिवार्य नेपाली, अनिवार्य अंग्रेजी, सामाजिक गणित, ऐच्छिक लेखाशास्त्र, ऐच्छिक वित्तशास्त्र, ऐच्छिक अर्थशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि, भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि, कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि, पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म। सीमित सीट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77।
4: युनाइटेड एकेडमी माध्यमिक विद्यालय टीकापुर कैलाली।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई को यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाये
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजीक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने हुकन स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उत्तर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप समरपत्र नेपाली पात्र में फेसिंग टीटलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर द्वारा हुलाक मार्फत राहदानी वितरण शुरू सरकार दिलक जिम्मेवारी पूरा करना हुलाक कार्यालय के प्रतिबद्धता भदनी नगरपालिका के प्रमुख मसे अनियमितता असूली करपना घोटाला 66,58,000 आंतरिक आय सुविधा में ओरैल राष्ट्रपाल सभापति मिछान्यो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी बीच भेटवार्ता ओ दिल्ली के रेस्टुरेन्ट में भीषण आग लागि 10 जना की मृत्यु इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर हुलाक मार्फत राहदानी वितरण शुरू कलबाट इलाका हुलाक कार्यालय टीकापुर संघकै समन्वय सहकारीमा आजै राहदानी हुलाक मार्फत वितरण शुरू कलबाट आज पहिलो दिन 7 जनाकै राहदानी इलाका हुलाक कार्यालय टीकापुरमा वितरण केलाक हस्तान्तरण गर्के हुलाक मार्फत राहदानी वितरण काम शुरू कलक इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरकै प्रमुख तारानाथ पनेरू जानकारी दिलबाट कार्यालय प्रमुख पनेरू के अनुसार नेपाल सरकार 2082 साल चैत्र 13 गते बैठक मंत्री परिषद बैठक मसे स्वीकृत शासकीय सुधार संबंधी कार्यसूची के बुदा नम्बर 27 कार्यान्वयन करना क्रम में राहदानी हुलाक मार्फत वितरण शुरू कलबाट एका मिलाका प्रशासन कार्यालय के कार्य क्षेत्र भित्र के सेवाग्राही राहत पुग्ना हुलेसभे प्रमुख पनेरू विश्वास व्यक्त कलबाट इलाका हुलाक कार्यालय टीकापुर के प्रमुख एम नारायण उपाध्याय नेपाल सरकार के निर्णय के अनुसार हुलाक कार्यालय थप जिम्मेवारी प्राप्त हुलको ओहो जिम्मेवारी इलाका प्रशासन कार्यालय संघकै समन्वय व सहकारीमा पूरा गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त कलबाट इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरमा राहदानी के फर्म भर्ना क्रम राहदानी घरमा पुगेना कैके अफिसमा लिन ऐना कैके खुलाई पर्ना हो अनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय व्यवस्थापन गर्न वा राहदानी घरमा पुग्लक उहाँकन तिर पर्ना पैसा फे इलाका प्रशासन कार्यालय तिर्ना वा कैके फे राहदानी बाहक निशुल्क घरमा राहदानी पैना हुनबाट स्थानीय तहकै राजनीतिको प्रशासनिक नेतृत्व मसे पालिकामा आर्थिक अनियमितता हुलक पाइगिल्बा कैलालीकै भजनी नगरपालिकामा 66,58,474 असूल कर पर्नाकी घोटाला हुल्बा पालिकाकै बिरुजु 5,28,00,000 नाङ्गल्बा स्थानीय तहकै प्रशासनिकको वित्तीय प्रणाली नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार पैलक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजनीतिक नेतृत्व कर्णा प्रमुख उप प्रमुख नै अनियमितातामा लागवा छ असिन हुल्बा महालेखा परीक्षकीय प्रतिवेदन 2081-82 मसिन तथ्य देखाइल्बा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीलम कुमार नेपानकी उत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा कलक आफ्नो हलिलक 3,75,555 रूपियाँ हो वडा समितिकै बैठक वडा अनुगमन समितिकै बैठकमा समेत उपस्थित जनाकी 2800 बैठकी भत्ता बुझ्लको कर बाहेकके 24,862 रूपियाँ असुल कर पन्नाकी प्रतिवेदनमा कहिल्बा थारू संस्कृति प्रवर्धन शीर्षमा छुटेलक बजेट काठमाडौँकी आयरन एडभर टाइजिङ एजेन्सी मार्फत पास्ठ विद्यालयमा सड़क नाटक देखाएकी प्रति नाटक 99,600 दरले भुक्तानी दिलबाट रमैलोबाट काबाकले सिफे पास्ठ नाटक नगर प्रमुख उपप्रमुखको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 14 अनुगमन कलक भत्ता बुझ्ना फुलबाट 5 नाटक प्रमुख सहित 4 जना अनुगमन कलक प्रति अनुगमन 1,000 के दरले 20,000 रूपियाँ विपणामा 14 अनुगमन कलक देखाएकी 99,450 रूपियाँ अनुगमन भत्ता बुझ्लक प्रतिवेदनमा उल्लेख बा अस्तक उपप्रमुख विद्यालय जनचेतना कार्यक्रम के लाख छुटेलक 4,70,744 रूपियाँ काठमाडौँके म्याक्स क्रिएसन प्रणाली मार्फत 10 ठो विद्यालयमा प्रोजेक्टर मार्फत कार्यक्रम देखेलबाट दुनु काम खरिद निर्णय शाखा टिप्पणी कार्यपालिका निर्णय प्रतिस्पर्धा कुश मेकरकै सोझ देखे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनियमितता कलक पाइलक प्रतिवेदनमा उल्लेख बाद प्रमुख हुकनके कलक अनुगमनके वार्षिक खर्च 9,67,000 रूपियाँ हुलेस फे अनुगमनके फोटो फे नै भेटलक उल्लेख बा फसन्नी मसे 400 किलोमिटर के दूरीमा रलक भारतीय हरिद्वार भ्रमण नगर प्रमुखको उपप्रमुख 1,16,000 रूपियाँ खर्च कलबाट उपप्रमुख राजु तिरुवा आफ्नो भारतीय हरिद्वार गैलक खर्च हुलक बिरुजु आइलक तिरपन्ना बोटिलोबाट अस्थाक संघ उपप्रमुखके मोबाइल खर्च 66,000 ओ नगर प्रमुखके ल्यापटप खर्च 1,55,000 लेख्नबाट अस्थ एकठो व्यक्ति कार्यालयके काम कागजमा गैल श्रेय गाड़ी भाड़ामा लिलक पाइगिल्वा अस्थक भाड़ामा लिलक एक वर्षमा 5,56,500 रूपियाँ खर्च हुआ कार्यपालिका सदस्य कर्मचारी नियम विपरीत भत्ता लिनकलबाट अस्थक लिलक भत्ता 2,05,000 लेखा परीक्षण के क्रम असुल हिलक देखला से तर कार्यपालिका सदस्य गणेश कुमार विकफे 2081 भदौ 17 व असोज 15 कार्यपालिका बैठक में उपस्थित हो कि काठमाडौँमा भ्रमण के कागज बनाएकी 30,800 रूपया खर्च लिलक पहिलेबाट एकजना मंगना काठमाडौँ गैलकटी नगरपालिका के 9 जना वडा सदस्य 5 जना वडा अध्यक्ष 2,12,600 रूपया यातायात खर्च बुझ्नबाट पशु शाखा के 3 जना कर्मचारी समेत 5,00,000 बजेट की मच्छी पालन प्रबन्धन कार्यक्रम अनुगमन करला खर्च के लिए 44,000 रूपया बुझ्नबाट प्रमुख नै मन परिकर्णा हुलपाछ पालिकामा आर्थिक अनुशासन भंग हुला कर्मचारी हुक्रबटुलबाट बढ़ी प्रभावित क्षेत्र होके चिन्ना भजनीमा वर्षभरके आन्तरिक आमदानी 2,77,48,000 रूपियाँ के लिख तर यहाँकी अधिकारी हुकनके सुविधामा 1,05,13,000 सवारी साधन मरमतमा 73,42,000 रूपियाँ ईन्धन खर्चमा 83,11,000 रूपियाँ खर्च हुला सेवानिवृत्त हुलक शिक्षकको तलबी विधामा अध्ययनमा हुलक कर्मचारी समेत पोसाक भत्ता उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर बनाएपछि फेरि खरिदमा अनियमितता कलक देखेलक उहाँ बोटिलोबाट स्थानीय राम नारायण चौधरी बोटिलोबाट खोज खबरमा एकरी विश्राम विश्राम पाछ फेरि सेबी सुन्तिरेबी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
3: दाजु हेर्नुहोस् न भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु
4: के गरौ त म यत्रो उपचार गरिसके कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न
3: दाई बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि
4: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक
5: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू ओपिडी सेवा भिडियो एक्सरे सेवा ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा इसिजी सेवा मेडिकल सेवा इएनटी सेवा प्लास्टर सेवा बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म डाक्टर हेमन्त स्वार टिकापुर ब्लक नम्बर 7 गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टिकापुर फोन नम्बर 0191-560-095 मोबाइल नम्बर 98484-27359
0: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सभापति रवि लामिछाने भारतकी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता हुँदा भेटपाछ प्रधानमन्त्री मोदी आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एक्समा सभापति लामिछानेसँग भेट पहिलक अत्यन्त खुशी लगलक उल्लेख गर्नबाट संघ उहाँकी सभापति लामिछानेसँग साझा समृद्ध भविष्यका लागि नजिक मसे सहकार्य गर्न उहाँकी चाहना स्वागत पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न उल्लेख गर्नबाट प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल पहिलो छिमेकी नीति अन्तर्गत एक प्राथमिक साझेदार राष्ट्र हुलको दुनू देशकी बीच अलग विशेष बहुआयामिक सम्बन्ध उच्च स्तरमा पुगेका नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक उल्लेख गर्नबाट भेटकै अवसरमा उहाँको बीच नेपाल भारत सम्बन्ध राष्ट्रपा भारतीय जनता पार्टी बीच के सम्बन्ध दुई देश बीच के आपसी हित के संग विविध आयाम के विषय में छलफल हुई रह उह अवसर में भारतीय विदेश मंत्री डाक्टर एस जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल विदेश सचिव विक्रम मिश्री लगायत के उपस्थिति हुलसेफे नेपाल तर्फ मशीर सभापति लामी छाली वहां के धर्मपत्नी निकिता पौडेल राष्ट्रपा के नेता द्वय विपिन आचार्य दीपक बोहरत्था नया दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतवा संघ के उच्च अधिकारी के फिर सहभागिता हुल भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन के निमन्त्रणामा सभापति लामी छाने भारतकै पाँच दिने भ्रमणकै लागि सोमबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान कलबाट यहीबीचमा सभापति लामी छाने मंगलबार भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह विदेशकै मन्त्री डाक्टर जयशंकर भाजपाकै अध्यक्ष नवीन लगायत उच्च पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गर्न रहे। दैनिक तापक्रम बढ़ोसँग मधेस प्रदेशकी जनजीवन प्रभावित हुँदा मधेसकै अधिकांश ठाउँमा एक हप्ता से 40 डिग्री सेल्सियस से धेर ऊपर तापक्रम बढ़लक यहां के जनजीवन नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाके लू के महामारी फैल सकना जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय जनकपुर सचेत करेलाबाट लू के कारण अत्यधिक थकान हुना कमजोरी हुना तीर्खा लग्ना बेहोश हुना बान्ता हुना लगायत जोखिम निम्तना हुना प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरकी फिजिसियन डाक्टर दिव्ये जय ठाकुर लू मसी बस्ना घर भित्र व जूर ठाउँ रहना घाम नै निंगना कैके हल्का लुगा लगेन घर बाहिर निकलेपछि कपड़ा वा कपारीमा छोप्ना पानी झोल पदार्थ पर्याप्त पिनाकै सुझाव दिलबाट मधेसमा अत्याधिक गर्मी विगत कुछ दिन से हेर्दै ज्याला दारिकना मधुरकुलकी जनजीवन समेत कष्टपर बनलवा शहरी क्षेत्रमा फेरि मनिन्के चहलफहल नै कम देखिलवा दिनकै समयमा घर बाहिर नै निकल्ना काममा मुस्किल हुटी सर्वसाधारण बटिलोबाट जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय जनकपुरकै प्रमुख राजीव झाले यही वर्ष समय नै मनसुनी वर्षा हुन सम्भावना कम देख्ला बोटिलोबाट झाले जेठ 18 गते से असोज 13 सम्मकै अवधि मनसुनी समयमा स्वीकार हुलसेफे अब जेठ महिना ओराई लग्न समेत उखरमा लो गर्मी हुन कलाबाट गर्मीकै समयमा पानीकै कमीकै कारण एनर्जीकै समस्या धेर हुइसक्ना शरीरमा पानी कम हुलेसे फेरि शरीरमा से विषाक्त पदार्थ बाहिर आइने सक्ना डाक्टर ठाकुरकै गर्मीमा जोग्ना तीर्खा लग्लासे फेरि दिनकै 8 गिलास पानी पिना सुझाव दिलबाट ठाकुर पानीकी कमी शरीरमा डिहाइड्रेसनकी समस्या आइसक्ना बोटिटी पानी पिलकसँग सट्टा बियर कफी सोडा जसिन पिय पदार्थ झन हानिकारक हुना बोटिलोबाट खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछ फेरि 20:30 सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
6: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
7: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
6: मिस्तरान बर्जन उकन घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
8: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
9: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 43 26
10: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
11: असार 6 गते पहिलो शनिबार
10: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खट्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
12: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
11: डाक्टर आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
10: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868800008 र 9825637772
6: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
11: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किङ पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ब्याग प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808
0: विश्रामपा छ फेरि स्वागत भयो भारतकै राजधानी दिल्ली स्थित मालवीय नगरमरलक लेमन ग्रीन रेस्टुरेन्टमा बुधबार बिहानकी हुलक भीषण आग लागि मध्य जनाकी मृत्यु हुला दिल्ली अग्नि नियन्त्रक सेवाकी अनुसार बिहानकी करिब 10 बजे आग लागि हुलक सूचना प्राप्त हुनुभएको छ 10 ठो दमकल घटनास्थलमा परिचालन कर्मी रह दमकल कर्मीको र कुछ घण्टाकै प्रयास पछा आगि नियन्त्रणमा लिन रहे आगि नियन्त्रण लिएपछ उद्धार टोली रेस्टुरेन्टकै बेसमेन्टमा गम्भीर अवस्थामा रलक व्यक्तिको बाहिर निकल्न रहे उद्धार कलक मध्ये 10 जनाकी मृत्यु हुलक पुष्टि हुलासेफे जीवित उद्धार कलक अन्य 3 जना उपचार किल्लाक अस्पताल भर्ना करगिलवा स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी हुकनके अनुसार आगि भन्गै भुइँतलामसे सुरु गरगिल आग लागेकै कारण सिस्ता फुटल पाछा आगि तीव्र रूपमा बेसमेन्ट तर्फ फैललो उहाँ लकमणिकी बाहिर निकल्न नै पलक भित्र थुनलक बटाइगिल प्रारम्भिक अनुसन्धानमा विद्युत सर्ट सर्किटकै कारण आग लागि हुलक भुइसक्ने आशंका गरिल घटनास्थलमा उद्धार तथा अनुसन्धान कार्य जारी लक अधिकारी बटिलोबाट नेपाल एसीसी महिला प्रिमियर कपमा विजयी शुरूआत कलबाट मलेसिया के कोलजे टुंगुर जाफर ओभल मैदानमा बुधबार हुलक प्रतियोगिताकी पहिलो खेलमा नेपाल हा कतार हा 8 विकेट हटेल जित केला कतार देलक 77 रनकै सामान्य लक्ष्य नेपाल हा 10.5 ओभरमा 2 विकेटकै क्षतिमा पूरा कल रहे नेपाल खेलाइक बिन्दु रावल सर्वाधिक 33 रन बनेर रहे अस्ताको उपकप्तान पूजा महतो अभिजित 28 औं कप्तान इन्दु वर्मा 6 रन बनेरबाट बलिङ कतार खेलाइक शाह नरी नवाब खानो खादिजा अहमद 1 विकेट लगाए अस्ताका पहिलो ब्याटिङ कलक कतार 16.5 ओभरमा 1 विकेटकै क्षतिमा 76 रन बनाल पाछा पहिलो ब्याटिङ कलक कतार 16.5 ओभरमा 1 विकेट गुमाएकी 76 रनकै बनेर रहे कतार केलक ओपनर गीतु रूट चण्डी रूकी सर्वाधिक 25 रन बनेर रहे अस्ताका कप्तान आए 10 रन बनेलक अन्य खेलाडीको दोहोरो अङ्कमा रन बनेर नै सक्ला बलिङमा नेपाली रूबिना छेत्री 3 विकेट लिलबाट कविता कुँवर रिया शर्मा पूजा महतो 1-1 विकेट लिएर रहे समूह डीमा रलग नेपाल हँ 2 रो खेल बिहिबार भूटानसँग खेल्न हुलबाट समूह डी नेपाल सहित कतार हङकङ भूटानबाट 18 देशकै सहभागिता रलग प्रतियोगितामा सहभागी देशमा 4 समूह विभाजन कलबाट नेपाल रलग समूह एमा थाइल्याण्ड म्यानमार जापान बहराइन मंगोलियामा रहलबाट समूह बीमा ओमान चीन फिलिपिन्स ओ साउदी अरब रहलबाट समूह सीमा इण्डोनेसिया मलेसिया कुवेत ओ सिंगापुर रहलबाट समूह शीर्ष 2 टोली क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्न हुलबाट क्वार्टर फाइनलकै खेल विजेता एसीसी एसिया कपमा छनौट हुँदा हुलबाट इन्सियाको मलेसियामा सम्पन्न एसियन गेम छनौट मसे नेपाल बाहिर रहेका हैं यह समाचार संघ खोज खबर भयो जेनासे पहिले खबर के मुख्य शीर्षक फेर सेक्छु इलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुरद्वारा हुलाक मार्फत राहदानी वितरण शुरू सरकारमा दिलक जिम्मेवारी पूरा गर्न हुलाक कार्यालयकै प्रतिबद्धता भदनी नगरपालिकाकी प्रमुख मसे अनियमितता असुली करपना घोटाला 66,58,000 आन्तरिक आय सुविधामा ओरेल राष्ट्रपा सभापति लामी छाने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच भेटवार्ता ओ दिल्लीकै रेस्टुरेन्टमा भीषण आग लागि 10 जनाकी मृत्यु निटा बक्ला खोज खबर प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद निटा बक्ला

0: को नरेश दादू एम्बुलेंस में आता मैं लागे छिट्ठा नगर के मोटरसाइकिल बाकल अच्छी उन्हें में बैठा कर भौजी है ना सरपंच उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला तक खाना जात फे दिए न्यू इट ना स्वयं सेविका दीदी
0: हो अब न ठीक कली डॉक्टर और निकट सम जरमेन कुछ से खवाई हुई
2: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाए क्लाक सपवा कटलक अंगाना स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस गेलक रुगा गरगहना घरी पेटी मुन्द्री बाकल से फाफर करा दी बेरमिया अक्टेले से झन समस्या बिना बिलकुल से बेरमिया न शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खबना के कठा असिक कर से रक्त संसार में समस्या हुई सिक्ठा यही ले करबेल सपवा दसलक शरीर का भाग काट खा फाक पौना अवस्था पे आई सिक्ठा
3: सर्पदंश संबंधी भर पर्द वो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेव दिठा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
6: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् त
5: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
6: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
5: अब त म ढुक्क
7: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
6: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
8: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गते से टीकापुर वितरण केन्द्र हो लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य रलकोर से विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुक्रान यह सूचना से जानकारी कराएती। विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली।

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरा भर भर बराइटी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ो ढंग कबू पसल छानकर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग पाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: पेट संबंधी संपूर्ण समस्या को उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुर में
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 98484-27359 र 98-48-42-73-59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै
5: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: दाई नाच बा कहाँ जाई लग त
1: पेशाब लाग्ता चर्पी जाई टुका
0: ए रुको नाट पछि नोकला छे मै टर्च लाइट लट्ठी दिए तु लेख जाओ
1: काचे चुनु लट्ठी वा टर्च लाइट
0: का कर रही दाई राटिक डाला बाहनी का पर्ला छे वा ट्वाइलेट जाई पर्ला छे जहिया फे टर्च लाइट बारख को लम्मा लट्ठी देख के हो जाई पथा का कर की बरखा छक बा सांप रहसे थ टर्च को अजराले सापन ल्या खसे दै छ वो लट्ठी ठैक ठैक आओ सुन खा साफ भक्त का
1: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोटकी छाई
0: दाई हमन ना स्कूली मैडम सर मुखर साफ नुखर सिद्धना ठाउं सी न्यांग पड़ला सी वो काम करा पड़ला सी जहिया फेठा फुसियार भी पड़ता गई खा सीखे लबाट का आम हो छटवा जुभा झपा अथवा झंगा सलक ठाउं में न्यांग पड़ला सी लम्मा लट्ठी देखा ठैक ठैक बजेटी न्यांग पड़ता गई खा कलबाट
2: सात बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े था मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना बिलापुर से सुखा ठाव का खोजी में उकड़ा बाहर निस्कट
1: मोस्ट मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लग्न आई सकता विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकते था
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
4: टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर एक को टोल भेला सञ्चालन हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर एक को आर्थिक वर्ष 2083-84 मा सञ्चालन हुने वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम छनौट सम्बन्धी भेला तहसील अनुसार हुने भएकोले सम्बन्धित गाउँ टोल र ब्लकका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। ब्लक नम्बर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 समितिपुर ज्योतिनगर दशघरुवा सतघरुवा राजीपुर विपतपुर दुर्गानगर एकतानगर र विशालनगर बस्तीहरूका लागि भेला हुने स्थान ज्योतिनगर आधारभूत विद्यालय ज्योतिनगर जेठ 23 गते बिहान 7:30 बजे ब्लक नम्बर 1, 2, 3, 14, 17, 18, 19, 20, 21 र शक्तिनगर शिवनगर एकतापुर बाढ़ी पीड़ित गणेशपुर तीनघरुवा भूपू कर्मचारी भूपू कमैया र चमेलीपुर बस्तीहरूका लागि भेला हुने स्थान टिकापुर कन्या आधारभूत विद्यालय ब्लक नम्बर 18 जेठ 23 गते दिउँसो 2:30 बजे ब्लक नम्बर 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 23 र व्यवसाय क्षेत्रका लागि भेला हुने स्थान राधाकृष्ण मन्दिर ब्लक नम्बर 9 जेठ 24 गते बिहान 7:30 बजे ब्लक नम्बर 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25 छेदरखैला र बनगाउँका तीनै पूर्वाको लागि भेला हुने स्थान साईमार्ट अगाडिको सार्वजनिक चोक ब्लक नम्बर 25 जेठ 24 गते दिउँसो 2:30 बजे टिकापुर नगरपालिका एक नम्बर वडा कार्यालय।